मशहूर डाकू जेल चो फरार होके एक बीड़ विच बैठे अपना शिकार भुन रहे हैं। शाम कौर नौ दी एक औरत नू रस्ते विच कुछ बदमाशा ने लुट लिया। औरत दे रोण दी आवाज सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं। अगों बाद दी कहानी

0: सफर साझा विरसा गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज रहता दे सौगात वंडदा साझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM पे सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
2: क्रिसमस डे प्रचार ते पसार ले संपर्क करो
0: साझा विरसा दी टीम 647-8355-6478355294
3: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ।

0: 7998877 सोफा स्टूडियो .ca। थैंक यू जी।
1: पिछले 25 साल तो राजनीति की गहरी समझ रखने वाले ब्रैम्पटन नू चंगी तरह समझने वाले अमन शर्मा हुन ब्रैम्पटन दे वार्ड 7 ते 8 तो रीजनल काउंसलर दे कैंडिडेट ने।
2: की तुसी चाहुंदे हो एक ऐसा काउंसलर जो तुहाडी गल सुने ते तुहाडे मुद्दे ते डट के काम करे, ता याद रखो अमन शर्मा रीजनल काउंसलर।
1: प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक दे स्पीड बम्प्स, पार्किंग दी प्रॉब्लम, भीड़ भाड़ वालियां सड़कां, बाइक लेन्स, नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी ते
3: प्रोग्राम सुन वाले सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542947 8355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

होकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला, इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।

0: इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस या फिर बिजनेस इंश्योरेंस तां तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कई इंश्योरेंस कंपनियां तो कोट कंपेयर करके थोड़े लिए सही कवरेज ते वधिया रेट लभ सकती हाँ। ज्यादा जानकारी वास्ते तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉल और टैक्सट एट 647-919-1002
1: मैं नवा घर लिया है। तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
2: हो जी एदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह। चलो मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इहनां दे प्राइस अते सर्विस नूं कोई बीट नहीं कर सकदा। तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दे ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने। मिसेस अगा स्टील The Appliance Junction. Call 905-450-0054 905-450-0054

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23 license number 10394।
1: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
2: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखों नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
3: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
4: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विचान।
5: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, रिस्पांसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
4: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट premgil.ca।
5: By Prempal Gill.
6: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता। मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां ने बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां। सब तो इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां। हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
7: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ।
8: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
9: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दयां लई जनता दा साथ देणगे, उन्हां च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डिवेलपमेंट, नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशन नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, ग्रीन स्पेसिस दी मेंटेनेंस शामिल है।
8: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
10: मेरा नाम राकेश शर्मा ते मैं सिटी काउंसिल लई कैंडिडेट हां वार्ड 7 एंड 8 ब्रैम्पटन दे विचों। अपने बहुत ही ब्रैम्पटन दे विच इश्यूज हैगे आ, कंसर्न्स हैगियां। सब तो मेजर कंसर्न जिहड़ा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा हैगा, ओहदी रिस्पांसिबल स्पेंडिंग नहीं हो रही, सानू बैटर सिटी सर्विसेज नहीं मिल रही, लोकल बिजनेस दी सपोर्ट है नहीं ते और प्रॉपर जिहड़ी अपनी नेबरहुड सेफ नहीं हैगी। अगर तुसी मैनू इलैक्ट करदे हो, मैनू सिटी हॉल दे विच मैं तुहाडी आवाज बन के जावांगा ते मैं जिहड़े जिन्ने भी इह तुहाडे इशू आ इन रिजॉल्व करांगा। Rakesh Sharma, candidate for city councillor, ward 7 and 8.
11: Approved and paid by Rakesh Sharma campaign office.
12: ਅਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਬੇਫਿਕਰ।
13: ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ।

0: आज तक बनाओ दिवाली ब्रांड्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: बिल्कुल जी, हैप्पी दिवाली ते मनाओ, खाओ पियो, मौज मनाओ। ते लो जी, मैं नंबर एक थानू दवा बड़ा वधिया, ए हैगा नंबर कैन ट्रक दे जगतार रमन जी दा। तुसी इना नू कॉन्टैक्ट करना जी, जे तुसी चाहुंदे हो ना बहुत वधिया थानू जॉब मिले, तुसी सिटी च ट्रक चलाउणा, सिटी तो बाहर जाना तां वी तुसी कैन ट्रक दे जगतार रमन जी नू कॉन्टैक्ट करना। नंबर हैगा इना दा 647-292-5757 ते गलबात करो। तो ईगल ट्रक सेल्स बिल सिखों जी दे कोल तुसी ट्रक लै सकदे हो। ट्रक भी नवें नकोर ते हुंदे सैकेंड हैंड है, पर नवें वर्गे हुंदे आ। सो तुसी इना नू कॉन्टैक्ट करो ते तुहाडे जिहड़ा वधिया ट्रक थानू मिल सकते हैं। तो फाइनैंसिंग ऑन द स्पॉट है, 416-819-6000 ते गलबात हो सकती है। तो जे तुसी चाहते हो अपने ट्रकों वॉश करवाना अंदरों बाहरों, ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश नू तुसी कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि 24/7 सर्विस है जी इन्हां दी। इन्हां नू तुसी कॉन्टैक्ट करो ते फिर थानू ये जिहड़े ट्रक है धो सवार के कोई खराबी है उन्हां च, कोई लीकेज डैमेज है, वह भी ठीक कर देंगे। नंबर नोट करो 905-452-9955। तो स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज नूं तुसी कॉन्टैक्ट करना जे तुसी चाहुंदे हो बहुत वधिया थोड़ी गड्डियां दी डेंटिंग पेंटिंग होवे ठीक, जां तुसी कोई भी खराबी उन्हां च हैगी है, या जिवें ऑयल चेंज वगैरह कुछ करवाउणा हुंदा कोई भी। सो तुसी इन्हां नूं कॉन्टैक्ट करो ते इन्हां ने बड़ा वधिया थानू जिहड़ा हैगा गड्डियां नूं ठीक कर देना, क्योंकि चार लोकेशन तो सर्व करदे आ। नंबर तुसी नोट करो जी, स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनी दा 905-874-9978 ते तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सगनदीप नूं कॉन्टैक्ट करना वधिया सोफे बनाउण दे लई, और सोफे इन्ने कमाल दे क्योंकि किसी भी प्रोविंस दे विच तुसी रहिंदे हो, वैबसाइट विजिट करो, सोफे पसंद करो ते ऑर्डर करो ते उत्थे ही तुहाडे सोफे पहुँचा दिते जाणगे। नंबर हैगा जी सगनदीप दा 905-799-8877-9057-99-88-77 ते जिहड़ी गलबात है वह की जा सकती है। तो जिवें आपां ट्रकां दी गल कर रहे हां, तो एक मैं तुहानू जरूर कहूँगी कि तुसी ना जेकर चाहुंदे हो भी तुसी ट्रकां दी इंश्योरेंस करवाउणी है, यानी कि जे तुसी ओनर ओपरेटर हो, तुहाडे कोल अपना ट्रक है, तुसी अपने वास्ते इंश्योरेंस ट्रक इंश्योरेंस जिहड़ी वह लैना चाहुंदे हो, तो तुसी चाहे लोकल चलाउंदे हो, चाहे कैनेडा वाइड चलाउंदे हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर ते जांदे हो, बेसिकली तुसी अपनी अथॉरिटी ते कम करना चाहुंदे हो, तो तुसी गुणतास नू कॉल करनी है। 647-919-1000 दो नंबर है। तो जे तुहाडे कोल पंज या पंज तो ज़्यादा ट्रक है तो तुहाडी रिन्यूअल आ रही है, तुसी ट्रक दी पहली बार इंश्योरेंस करवानी है, तां वी तुसी कॉल करनी है गुणतास नू। और इन्हां कोल एक कंपनी है जिहड़ी कि स्पैशल डिस्काउंट थानू दिंदी है ते थानू बहुत वधिया रेट मिलेगा। गुणतास दा नंबर नोट कर लो 647-919-1000 दो, ते मेरा नंबर नोट कर लो 647-765-2340। ते बई लॉटरी जे नहीं पाई पा लो, लॉटो मैक्स जैकपॉट पता किन्ने दा हो गया, $90 million दा, और ये कहते हैं बिगेस्ट लॉट।
0: दिस इज AM 530 CHLO AM सर्विंग Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स. वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस. वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704. 416-524-6704.
1: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover.
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।

माई गॉड, व्हाट ए सॉन्ग मैन, आई लव इट, ब्यूटी। ओहो, कैसा प्यार है इस गीत में, कैसा रोमांस है, कैसा इश्क है, कैसी तांग होती है ना किसी को मिलने के लिए, ये वैसा गीत है भाईजान।

0: वाओ कैसे यार लफ्ज है, और प्यार तो बिना दुनिया सारी सुननी है, और ये बड़ी जरूरी चीज है। और पटा साहब अखीर ते होर की कहना चाहोगे सर?
1: मैं हजी जी अपने थोड़ी अपने उन्होंने स्रोतों गल करनी चाहता जो कि साडे फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं।
0: हाँ
1: उन्हें मतलब जे अपने उन्होंने को लाइसेंस हैगा जां वो नवा लाइसेंस लेना चाहते हैं वह तकरीबन हजी जी असं उन्हों की हर तरह हैल्प करा जे बहुत सारे सोते लाइसेंस लें लैके रखे आ पर वह कम नहीं कर रहे उन्होंने मतलब सारे सारे जी बहुत सारे सोते इदा भी जिन्हें लाइसेंस रिन्यू कराई जा रहे पर वो गांह काम नहीं कर रहे पर वो भी जो साढ़े सोते सानू आगे ज्वाइन करते हैं तो असं उन्हों की बिल्कुल हैल्प कर सकते हैं जां वो सोते जिन्हों को लाइसेंस है अपने अपने उस विच कुछ नहीं है असं उन्होंने भी हैल्प कर सकते क्योंकि साढ़े उस की हर्जी जी किसी तरह की कोई भी फीस नहीं हैगी कोई डेस्क फीस नहीं हैगी कोई मतलब कोई रूम फीस नहीं हैगी बाकी जो थोड़े ट्रेनिंग्स वगैरह है सारिया फ्री है हाउसिंग ट्रेनिंग ज अपने जो भी तो अपने कंपनियों की ट्रेनिंग जो कहने भी मैंने वन टू वन किसी कंपनी की ट्रेनिंग चाहिए आ वह भी साढ़े जो ट्रेनिंग सारिया फ्री है तो हरी जी इस सब वास्ते क्योंकि जिस तरह साडे ऑफिस में ज्वाइन कर दिया असं तुम्हें एजेंट नहीं है करते साडे ऑफिस वालों तुम्हें कोई चेक इशू नहीं किया जाएगा जो भी जिस कंपनी का लिखे लिखोगे वो कंपनी ही तुम्हें पे करेगी मतलब तुम फिर आम थोड़े कई दिमाग में जी पहलियाँ पांच पॉलिसियां वो तो कंपनी लिखोगे तुम लिख सकते बिल्कुल तुम अपनी पहली पॉलिसी खुद ही भी लिख सकते हैं बाकी हर चीज साढ़े सोते किसी तरह की भी कोई इंश्योरेंस चाहिए आप लाइफ आ क्रिटिकल आ मॉर्गेज आ सर्विस इंश्योरेंस है विजिटर मेडिकल इंश्योरेंस आ ट्रैवल इंश्योरेंस आ जा कोई इन्वेस्टमेंट हैगा आर ई एस पी हैगी आर डी एस पी हैगी अपने टी एफ एस अकाउंट हैगा फर्स्ट टाइम होम वार प्लान हैगा इस सब वास्ते हर चीज एक एक नंबर जिथे इंश्योरेंस का नाम आ गया सिर्फ कॉल कर सकते हैं
0: जी
1: 647-331-600 647-300-3100
0: ਪਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆ 70 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 11 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ
1: ਤੇ
0: ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ 647-300-3100 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪੱਡਾ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੁਆਲੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਲੀਵ ਮੀ ਆਰ ਨਾਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: हेलो
3: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हाँ जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
3: इंडिया दिया टिकटा चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दिया टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
3: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया। मिल जानगियां?
2: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
3: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
4: 32-55-80-98
3: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
4: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हां कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगूजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium

0: कॉल किया ना आईपीडी भी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कॉल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए था
1: क्यों क्या रहे यहाँ पर
0: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
0: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
3: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट
4: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है
5: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5600
6: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है
3: 11 AM to 6 PM, all drinks 50% off. टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन
7: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बंदा है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणा तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10
8: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल
9: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी सत श्री अकाल जी मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो

0: हमारी इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन लूप ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा डे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार
4: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan waste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551
5: ਰੋਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਯਾਰ
6: ਓਏ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ
5: ਵਾਹ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਈ ਮੋਨਾ ਜੀ ਦਾ
6: ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ ਦੀ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-509-1509 ਤੇ
7: ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੋਮ

0: Offer at 10.99 per person. Sweets starting from 6.99 per pound. Simply Indian Sweets and Restaurant, serving you from three locations: Garden Loop Trail, Fender Way, Financial Drive in Brampton. Simply Indian Sweets and
1: Restaurant. Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
2: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो, इको ही ना, अते इको ही था, CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

0: रहते हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-455-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-455-3381 416-455-3381।
3: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
4: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
3: 905-564-6444।